पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया वेच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया वेच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाव करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा जगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

इस महिमा विच मन बिरती एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु दे चरणा ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

अंदर बोल दी, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज। वो आवाज जेड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर वध गई, अंदरों पावर वध गई, अंदरों गूंज प्रतीत करो सिमरन।

तृष्णा भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गई, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ। हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जिहड़ियां बाहर नहीं दिसदी, अंदर उन्हां नाड़ां विच

0: जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास, अंदर प्यास।
1: अंदर प्यास, अंदर प्यास।

0: खालसा जी, आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी। कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो बदला का को गाहक आयो लाद्यों का आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी क्यों पुज पहा मोहन ठगौरी

0: जिता जित के कायम सिख राज कीता, चंडा केसरी लाहौर चुला दिता। जी दी बात ने बेअफगान पौदे, नौ जग दे विच चमका।
1: गुजरा वाले दी धरती 1791 दा पागा परिया दिन
2: सरदार गुरदयाल सिंह दे घर माता धर्म कौर दी कुखों जन्मिया सरदार हरी सिंह नलुआ।
1: 7 साल दी उम्र विच ही पिता दा साया सिरों उठ गया। नानकिया दी निगरानी विच हरी सिंह ने शस्त्र विद्या ते कोल सवारी विच निपुणता हासिल कीती। कुछ सालां विच ही चंगा योद्धा बन गया।
2: शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने एक दिन हरी सिंह नलुए दी वीरता दे करतब देखे ता अपनी फौज विच भर्ती कर लिया।
1: दिना विच ही तरक्की कर हरी सिंह शेर दिल रेजिमेंट दा सरदार बन गया। शेरे पंजाब दे जरनैल खालसा राज दे थम जरनैल हरी सिंह नलुए दिया गल्ला कर इंज होण लगिया।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद्दिया देख, पठान सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया। तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे। रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया। दौड़े फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकदी है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल पहाड़ियां गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारां बरछियां विच्चों मौत दे चंगियारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरियां वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पुछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंग है, टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है,

आरती। सतगुरु जी कह रहे हैं किरपान खंडा खड़क तुपक कहंदे ने बंदूक नो तबर और तीर ए जड़े शस्त्र ने किरपान खंडा खड़क बंदूक तीर सैफ सरोही सैथी सैथी कहंदे ने बरशी साहब जी कहंदे ने ए

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तुफंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तलवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरछी है, तू ही तबर है, तू ही तलवार।

इन्हें किले का दरवाजा तोड़ना है, असा किले ते कब्जा कर लेना है। ए मस साथी झूमदा होया अगे वधे आ रहा है भाई बजित्तर सिंह सामने हो हाथी दे इन्हां घोड़े की लगाम पूरे जोर नाल खिंची। ए घोड़ा

हाथी जद भज गया ते हुण जेड़े अगे दुश्मन लड़न वास्ते तैयार खड़े ने उन्हां वल होए ने हुण चार चफेरियों लड़ाई शुरू हो गई। इन्हां सिंघां ने अनेकां नूं शहीद कीता। हैरान हो गए राजे।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागन सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

उनक नाम खुदाया। बाहर की अगन जाओ बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर की अगन ज्यों बुझे जल सरता कै।

परिंदगह मारे महीपत जियो कैसे को बचाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाई है। माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाई है। तहां जो बेआपे माया कहां।